0: Music.
1: उन्होंने कहा कि तरक्की जरिए ममालिक जदीद टेक्नोलॉजी जब मैं पाकिस्तान साइंटिस्ट सोसाइटी की तारीफ की तो जिसे दुनिया भर के हाथों काम करने के लिए बर्बक कोशिशें की और इस शोबे के पाकिस्तानी साइंसदानों को मुताबित किया तो उनकी कोशिशों से इस शोबे में प्रोसेस को आगे बढ़ा। आप चाहे भारत में आज इस्लामाबाद है।

0: वक्त कभी कभी किसी खत की तरह दिल के दरवाजे पर छोड़ जाता है कोई भूली बिसरी याद, कोई भूली सी दास्तां, लम्हा लम्हा एक पूरी तस्वीर निगाहों के सामने आ जाती है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है। सन 2000 तक पोलियो मुक्त विश्व का सपना साकार कर

0: AIR FM 2 सदाबहार 10 गाने।
1: दिसंबर 2001, ये दिन मंगेशकर कोकिलाओं के स्वर साधना जीवन के सम्मान का एक और अच्छा दिन रहा, महत्वपूर्ण दिन रहा। जी हाँ, फिल्म है छोटी सी बात और इस गाने में आशा जी के साथ यशु दास भी हैं।

0: Has anyone seen my pen? Yeah, Ravi, you've taken my pen or what?
1: No, man.
0: Ravi, give it, yaar. I know you've taken it.
2: Shak? Aur wo bhi ek dost ka?
0: Yaar, Ravi?
3: Maine chori nahi ki. Main chor nahi hu. Main bhooka mar jaunga, par chori nahi karunga. आपने एक सच्चे इंसान की खुददारी को ललकारा है, खुददारी को। मैं जा रहा हूँ, लात मारता हूँ ऐसी नौकरी पर। अथू
4: बी फॉर यू मूवीज, फिल्मी, वेरी फिल्मी।

जो सपने देखे गए उन मंजिलों की ओर कदम बढ़ाने की शुरुआत होगी। सबको लेकर चलेंगे साथ, सबको बांटेंगे प्यार और देंगे प्यार।

0: चित्रलोक के इस भाग के प्रायोजक थे बजाज सेवा आश्रम लिमिटेड।
1: छोड़ो भी, कितनी तारीफ करोगे।
2: कसम से ये खूबसूरत बाल मुझे दीवाना बना देंगे।
1: आप सिर्फ बाल नहीं, मेरा चेहरा भी देखते रह जाओगे।
3: जी हाँ, अब बजाज आमंड ड्रॉप्स केश तेल के साथ बजाज बोरो हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम बिल्कुल मुफ्त। अब बाल भी सुंदर, गाल भी सुंदर।

0: चक ने किया है।
1: टाइम्स एफएम ये
2: राधे श्याम राधे श्याम।
0: अरे राधा, ये किस फिल्म का गाना है?
2: ये गाना नहीं है भाभी, ये एक दुकान का नाम है जहाँ रंग बिरंगी हैदराबादी नेचुरल फ्रेश वाटर पर्ल्स की प्रदर्शनी लगी हुई है।
0: तुम मुझे वहाँ ले चलोगी?
2: क्यों नहीं, जरूर। और आपके लिए 10-25% की छूट भी है।
3: Teens Today, the magazine for teenagers from India Today.